मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये, एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सै जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सै हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ मैं तेरा सिवरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला तू कहा सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भुल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

सत्संगी सज्जन गुरु के प्यार वाले जितने भी माई पाई साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पवित्र कदमों की हाजरी भर रहे हो

be specific here out there if you have a story to tell me. आओ तेरा क्या भी सामना वाली है क्या हो रहा है और साढ़े वास्ते पकवान है नानक सिर्फ पी रखिया आओ बैठ सुन सदा ने क्या महाराज सुल्तान बादशाह कह दिए अजू कह लगे मना ने जो हो रहा पेरीज के इन बादशाह ही दे क्या मत अजो कैसे लगा टोपरी जबान मेरे सतगुरु तेरे को पूछने वास्ते चिंता नहीं करना पर कारपुटी मार देखनी होगी जी आप आ जाते हो घर वापस जाना तेरे फिर तेरे दर्शन हजू कह लगे एना बदलिया लैके घर आया पूर्णी मां बिल्कुल बीच नहीं थी दाता जी मां उस तो अज देरी आके आए आपके कह लगा मां जे सच पिछड़ी है ना तो अज तो आने वास्ते चेती नहीं ये मेरे खेलदारी है मेरी भी मां अब तो मैं वो दाता मिले जिसे दर्शन जीतना मेरे कम करनी है माई मैं

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उपदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जीदान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जीदान ते भगती लाएं हास्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चिए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सादर भरिया रहा तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेबे जर साहेबे जायदाद होवे मित्रा दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदियां होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहने की जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवा ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है काशिफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला प्रगटाण वाला इसम फाइल ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन सरार मीन्स बहुते पेद जीवन दे अनेका ही पेता नू सरलता विच कर देने वाला कौन है काशिफ सरार गुरु गोबिंद सिंह बाबा नंद लाल जी कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वडियाई करते हुए ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਏ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਪਰ ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ ਅਕੜ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾ ਇਕ ਛਿੰਨ ਇਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਧੁੱਪ ਮੱਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੁਨਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਏ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ
मोह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसे दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखन चाहता है मालिक मकान या मालिक दुकान कहता है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे चुट जाता है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है। जदों मैं दुआ कीती, जदों इल्तजा कीती, जदों खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इसे तरह मैं सारे घरां दे अगे उहदी आया, बीबियां माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदां कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्ताकम इरादे नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू कहा सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इत्थे खलोता है, गया क्यों नहीं? वो पक्का मंगता है, ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है, ते इत्थे अगे आ जा, तुसी तां कहीं जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ये निश्चय हो गया है मोह दूजी ना ही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए, फिर उत्थे ही रहना। जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या, ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आदीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहिगुरु तूं भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता, आदीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहिब कई बारी अरदासां करदे जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ हो कर दई है। आदीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोहतकित दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासू दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदों तक कई बारी इनू शकां शकूकां दा शुभार दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोह दूजे

मुख है अंगा, खालसे के हो सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अर पाता,

मित्र सिखाई। खालसा मात पिता सुखदाही, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो मित्र सिखाई। खालसा मात पिता सुखदाई, खालसा मेरी शोभाशीला। खालसा बंद सखा सद डीला, खालसा मेरी जात अरपत। खालसा मेरी जात अरपत, खालसा सो माँ को उत्पत्त।

खालसा मेरो धर्म अर कर्म खालसा मेरो पेद निज मर्म खालसा मेरो सतगुरु पूरा

सेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना। या मैं रंच

पर है तब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपण वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई। चार पाव दोए सिंह गोंग मुख तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है, फाटे नाकन टूटे कांदन को

मिटावो। सिमरो जास विषम पर एक है, नाम जपत अगनत अनेक है। वेद पुराण सिम सुत आखर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जीव सावे, ताकि महिमा अग्नि न आवे। कांखी एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उतारो। सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहो। प्रभ कह सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ कह सिमरन दुख जम न सह। प्रभ कह सिमरन काल पर हरे, प्रभ कह सिमरन दुश्मन करे। प्रभ सिमरत कछ बिघ्न न लागे, प्रभ कह सिमरन अनदिन जागे। प्रभ कह सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ कह सिमरन दुख न संतापे। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हर रंग। प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। प्रभ कह सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कह सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कह सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कह सिमरन दरगह मानी। प्रभ कह सिमरन होए सो पला, प्रभ कह सिमरन सो फल फला। से सिमरे जिने आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कह सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कह सिमरन तिसना बूझे, प्रभ कह सिमरन सब किच सूझे। प्रभ कह सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कह सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते। प्रभ को सिमरे से जन परवान, प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। प्रभ को सिमरे से परि पुकारी, प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे। प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ कह सिमरन कारज पूरे, प्रभ कह सिमरन कबू न चूरे। प्रभ कह सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कह सिमरन सहज समानी। प्रभ कह सिमरन ने चले आसन, प्रभ कह सिमरन कमल विगासन। प्रभ कह सिमरन अनंत चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरे से जन जिन को प्रभ मेया, नानक तिन जन सरनी पिया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेर उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप।

धर्म काल में वो तन गुरु नानक के पास करा रेन नदी चुप्पी मार के खट खंड हरखंड मान लो शायद आज हजूर फिर चले गए सुल्तानपुर के अंदर सारे शहर के अंदर के पहुंच गए कि नारद वे नदी युद्ध देवी नानकी कई ने जाती किया जैसे तेरा वीर वही नदी तो बाहर नहीं निकली और देवी ने जल्दी कि मेरा वीर कदे नहीं डूबता वो तो डूबिया उतारना पशु परेश मुगत को उतारे पाहन पास उतारे हजू सचखंड बंद सचखंड वे नरम अगे नूर ही जानना ही जाना उस ज्योति तक जाके हजूर वीर हो गए जो जर में जर आए खसाना क्या ज्योति सन जो कुछ समय के बाद उस ज्योति जो सोना कांता है सदगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई नान जी तो मात लोग कल की जीवन उद्धार करने वास्ते वापस क्यों आ गए हजूर ने किया मेरे दादा जी पहले दसो सचखंड के द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद

था गोरख खड़ोते कहता है सब जाए जित दर लाख मसलदा जाए ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तो फिर इन्होंने अपने नींद क्यों की आवाज आई जाने मैं इन्होंने दुनिया से भेजे जाके मेरा नाम जपाओ पर इन्होंने मेरा नाम जपान की बजाय अपना नाम दिया इन्होंने अपना नाम जपाए अपना पति अपनी जनानियों का नाम भी मैंने इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे लिए नींद नहीं हो रही साहबान ने हथियार वाहेगुरु फिर करो कृपा असि मातरों में जाके की दुनिया में तो उस वे कहते अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जान के दुनिया में छुपाओ खेड़ा इस नमकारी नाम महामस्त है

ऐसों के तंदुरुस्त के पाध्याय जी की समाधि आवाज अभियान जी की कर रहे हो

विष्णु महामंत्र देवी देवी का मंत्र नहीं, ये अकाल पुरुष का अपना मंत्र है। सारे श्रोमणी सारे मंत्रों को सब तो जिथे महामंत्र दाजा मूल मंत्र का होता है उसे चीज की कार्य नहीं होती। मानो जिसे नलकार का मंत्र जिते उसे वाहगुरु दिया बख्शा सदा भरपूर रही। सब तो वड्डा जिसने इस मंत्र का जाप किया है उन्होंने किसी मंत्र की लोड़ नहीं, किसी मंत्र सब तो श्रोमणी मूल मंत्र पहली लोड़ है। सतगुरु के पास इस महामंत्र की प्राप्ति करते हैं वही नदी जो अज बाहर निकले जिसने हमारा किसके गए हजू कह लगे मराया सचखंड दोहर श्रेया का आप स्वामी खेले है अंतर मरदाने ने हाथ जोड़ के किया हमारा जिसके जाने सब मरदाने को नाल ये सज्जन ठाकुर गए तो तभी मरदाना नाल अज अपने वाहगुरु ने देश गए और तो मरदाने को इसे क्यों छे मरदाने इसका एक कारण कि तेनों वाहगुरु ने कीर्तन की कला बखी कीर्तन की दात बखी इनू ना ले जाने तो उसे जाके कीर्तन करना मरदाने जिस कीर्तन ने दुनिया का भला करना है वो कीर्तन मेरे वाहगुरु भी बड़ा चिखा फिर मरदाने तो कीर्तन करना सी हुक्म हो जाता मरदाने इतने छड़ जा असी हुक्म मोड़ना नहीं सी तेरे कीर्तन भी मरदाने अजे मात लोग बड़ी हो इस वास्ते तेन नाल ही पहली पवन महामंत्र की प्राप्ति करके फिर मेरे धन गुरु नानक दाता जी ने इतनी कमाई की कोई ऊंचा ही नहीं। आप नारायण कला धार जग में पर निर्गुण तो सरगुण बन के दुनिया अनुसार वास्ते आए कम ही नहीं थी पर बाबा जी वचन कर रहे सर इस वास्ते सतगुरु जी ने कमाई की थी क्योंकि दुनिया में उपदेश देना चाहिए कि भाई कमाई करोगे तो गली बातें कदे रहोगे अच्छा भी तो कह रही दुनिया क्यों नहीं कि करना कुछ ना पे एवं रहते तीनों जे रह पर भी बड़े पैदा हो जाता है सारी सृष्टि के मालिक को वर्त करना यह भी बड़ा होता है ज्ञान न कभी होंगे सपना सरला आकार कर्म ले ना पाइए हो हिकमत साहबा ने कमाई की भाई साहब भाई गुरा जी दिखते हैं कहीं ना बापे पाया बख्श दारी बख्श के वास्ते ऐसी शायद है साढ़े वास्ते बापू का सारा खजाना पुत्रा वास्ते नैत पुत्र संभालने से नलैत नहीं खजाना सारा बापू का बच्चों वास्ते अपने बापू वाहेगुरु तो अकाल पुरख साहबा ने जो दात लिया भाई साहब जी

स्नान के, स्नान करके चले आए हैं। एक दिन चले सूर्य एकांत कह के अपने सारे की मूल मंत्र का जाप करे, संत बड़ा महम बड़ी शक्ति है ये दंगारी मंत्र, जितना जप लो एदा बड़ा लाभ, तुरदियां फिरदियां उठदियां बहदियां हर ना और नाम वाहिगुरु जी का जपांगे सतगुरु दिया मेहरा, फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला, फिर साडा एक लोक दुखी पर लोक नाम करते मेले अखीरला आपका जीवार मिलकर लगाइए, उस उपरंत कीर्तन माफी और

अमृत धारा पूर्ण सागर मनोर पूरे जय जय कारण पर्व जयंत लाभे पूर्ण मुर्गे।

कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाहे वाहू का जतन सो संचो जो हो छी बात माया मोया टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेसर हर नाचे त्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कबे न उस्तत करे निर्भव निरंकार

गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचो विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदियां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे, मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने आख्या, गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां, आप सरबत

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तुम ही मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहां ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु परपंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पै दीजे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रही उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले दे दियो। तां जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होण लगे। तां कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह